मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 24 तारीख दिन है शुक्रवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री सांगे बोम्पा सिरथिपा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री कामे यांगफो और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री हेमंता स्वर्गिरी, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री लोपसांग नुरबू तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक थाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मेरे मिल्की मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा।

0: Income Tax Day is being observed across the country today, marking another milestone in India's evolving taxation system. The occasion commemorates the establishment and growth of the Income Tax Department while highlighting the country's journey towards a transparent, technology-driven and taxpayer-friendly tax administration. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra for the day. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Karnataka, West Bengal, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. Similar weather conditions will continue over northeast India during the next 2 days. IMD said thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, West Bengal, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Kerala, Mahi and Telangana till tomorrow. For Delhi, the weather agency has forecast a spell of very light rain accompanied by strong surface winds for the day. Prime Minister Narendra Modi today extended his best wishes to the Indian contingent who are participating in the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. In a social media post, Mr. Modi expressed confidence that Indian athletes will compete with passion, determination and a spirit of excellence. The Prime Minister said the skills and dedication of the country's athletes continue to inspire countless Indians. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the World Juniors and a firm favourite to win the title. Benchmark domestic equity indices pared their initial losses and were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex slipped 403 points to 75,989 and the Nifty fell by 116 points to 23,754. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया फास्ट ट्रैक।

0: कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश की शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्र स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
1: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
5: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता

0: राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India EU Free Trade Agreement is an important milestone in India EU strategic partnership.

0: central to the contemporary Patna city. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समीह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाउथराज और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे पहले गांधी स्मृति, तत्पश्चात पंडित जसराज के आवाज में चंद श्री कृष्ण भक्ति भजन। तो चलिए पहले सुनते हैं गांधी स्मृति के अंतर्गत देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी का विचार।

0: قد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
1: गांधी स्मृति। देश की एकता पर बोलते हुए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा है कि जब सभी धर्मों के धर्मावलंबी परस्पर आपसी सौहार्द के साथ रहने लगेंगे, उनके हृदय स्वच्छ और पवित्र हो जाएंगे और वे कभी आपस में किसी बात पर झगड़ेंगे नहीं, तभी देश की एकता सही अर्थों में सुदृढ़ होगी। तब स्वर कहीं बाहर नहीं, यही होगा हमारे पास। लीजिए बाबूजी की ही वाणी में सुनिए देश की एकता पर यह प्रवचन।
2: कवि ने कहा है तो मैंने तो कहीं और पढ़ा, उसने कहा है कि अगर आपको जन्म देश वाले जन्म के बाहर जो हुआ है वो तो भविष्य के लिए कहा है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी स्मृति के अंतर्गत देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी का विचार। आइए अब सुनते हैं पंडित जसराज की आवाज में चंद श्री कृष्ण भक्ति भजन।

पंडित जसराज की इन्हीं श्री कृष्ण भक्ति भजनों के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत नंग सिनावाती मानंग, चाव सुविनवय लोंगकन, सिराथम नमचुम, नंग चनावा मांजे और चाव वुविनवय लोंगकन के आवाजों में चंद आधुनिक खमती नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत नंग सिनावाती मानंग चाव सुविंदा लौंकन सिराथम नमचुम और साथी कलाकारों से चंद आधुनिक खमती नगमों का आकाशवाणी के तवांग के

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नंग सिनावाती मानंग चाउ सुविन वाय लोंकन सिराथम नमचुम नंग चनावा मांजे और चाउ उविन वाय लोंकन से चंद आधुनिक खमती नंग में। इसके साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग तवांग के 12वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी छोरतेन पेमा से तवांग में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के विषय पर एक वार्ता।
1: राशि दिलेक आकाशवाणी तवांग को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम छोरतेन पेमा है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग में 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं आज आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात के माध्यम से तवांग में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण विषय पर एक वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तवांग अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, बौद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। हर वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ की मनमोहक वादियों, झीलों और मठों का आनंद लेने आते हैं। पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यापार और आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन बढ़ते पर्यटन के साथ कुछ पर्यावरणीय चुनौतियां भी सामने आ रही है। प्लास्टिक, कचरा, जल स्रोतों का प्रदूषण, यातायात की बढ़ती समस्या और प्राकृतिक स्थलों पर बढ़ता दबाव हमारे पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो तवांग की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। इसलिए हम सभी स्थानीय नागरिक, पर्यटक और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाएं, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, कचरा निर्धारित स्थान पर डाले, जल और वन संसाधनों का संरक्षण करें तथा स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि तवांग की सुंदरता और स्वच्छता को आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। जिम्मेदार पर्यटन के सतत विकास का आधार है। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग तवांग के 12वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी छोरतेन पेमा से तवांग में पर्यटन और

0: और पर्यावरण संरक्षण के विषय पर एक वार्ता।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। चलिए अब आनंद लेते हैं महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत का। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला नगमा सुनिए वेकअप सिड फिल्म से कविता सेठ की आवाज में, बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एजान लॉय का।

अगला नगमा पेश है श्रेया घोषाल की आवाज में। सिंघम फिल्म के इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सवारा है अजय अतुल ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है केदारनाथ फिल्म से अरिजीत सिंह और अजीज कौर की आवाजों में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

अगला नगमा सुनिए पुष्पा द राइज फिल्म से जावेद अली के आवाज में। देवी श्री प्रसाद द्वारा संगीत इस गीत के लेखक हैं रकीब आलम।

सत्यमेव जयते फिल्म से पेश है अगला नगमा जारा एस खान और जैस मानक की आवाजों में। बोल जैस मानक के और संगीत तनिष्क बख्शी का।

लाल सिंह चड्डा फिल्म से भी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा नगमा। स्वर अरिजीत सिंह और शिल्पा राव के तथा संगीतकार प्रीतम। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नवगीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए आई हेट लव स्टोरी फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा के आवाजों में, गीतकार कुमार और संगीत विशाल शेखर का।

अदीब असलम, मोनाली ठाकुर और प्रिया पांचाल के आवाजों में अभी आप सुन रहे थे तेरे नाल लव हो गया फिल्म का नगमा, बोल मयूरपुरी के और संगीत सचिन जिगर का। श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए सूर्यवंशी फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में। जैम 8 द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है रेशमी विराग ने।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत पंडित हरि प्रसाद चौरासिया से बांसुरी वादन। राग है मियन की मल्हार तथा तबले पर संगत दिया है श्री सबीर खान ने।

वाद्य से बांसुरी वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने के दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले में सरकार और सीजेपी के बीच दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दूसरे दौर की वार्ता हुई। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने एडवेंचर मेचुका और मेचुका ट्राउट क्वेस्ट 2.0 के आयोजन की तैयारी की समीक्षा की। कृषि विज्ञान केंद्र तवांग ने ICAR IIVR वाराणसी के सहयोग से तवांग जिले के 7 गांवों में उच्च उपज देने वाले सब्जियों की किस्मों पर फ्रंटलाइन प्रदर्शन तथा कृषि आदान वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। रोड्स आर्ट्स एंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख मिश्रित मार्शल आर्ट्स एवं कॉम्बैट स्पोर्ट्स संस्था एब्रासुमेंटे एकेडमी के सहयोग से ईटानगर में ब्राजीलियन जिउजित्सु पर 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीके से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा है कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कई अन्य भाजपा नेताओं ने तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दूसरे दौर की बातचीत हुई। यह बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांगा, अभिजीत दीपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनके दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों ने आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर

0: 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
1: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपी भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
0: भारतीय जनता पार्टी के सांसद शशांक मणि ने आज सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरकार नीट यूजी परीक्षा विवाद सहित पेपर लीक की घटनाओं को गंभीरता से ले रही है और इन्हें संगठित अपराध मानती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि सरकार पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है और इस संबंध में व्यापक कानून लाने की दिशा में काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने शी योमी जिला उपायुक्त, मेचुका के अतिरिक्त उपायुक्त तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में एडवेंचर मेचुका और मेचुका ट्राउट क्वेस्ट 2.0 के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, लॉजिस्टिक, सुरक्षा, आतिथ्य, आधारभूत संरचना तथा प्रसार प्रसार से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि विज्ञान केंद्र तवांग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ICAR, IIVR वाराणसी के सहयोग से तवांग जिले के 7 गांवों में उच्च उपज देने वाली सब्जियों की किस्में पर फ्रंट लाइन प्रदर्शन तथा कृषि आदान वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम का समन्वय डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी विषय विशेषज्ञ उद्यानिकी एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया गया। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्रदान की। रूट्स आर्ट्स एंड कल्चरल ट्रस्ट ने अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख मिश्रित मार्शल आर्ट्स एवं कॉम्बैट स्पोर्ट्स संस्था अब्रासुमेंटे अकादमी के सहयोग से ईटानगर में ब्राजीलियन जिउ जित्सू पर 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किया। ये कार्यशाला रूट्स अरुणाचल के सदस्यों तथा राज्य के अन्य रंग कर्मियों के लिए अभिनेता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को लेकर विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग के अपार संभावनाएं हैं। बुडापेस्ट में भारतीय रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश बरवतनैनी ने यह कहा है कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में संविदा सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989, जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिश्र की हबीब रिजक को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिश्र की बार स्मह से मुकाबला खेलेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराघे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों पर स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान में वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और AI से बनाया गया है। इकाई

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। तवांग जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित तवांग नगर पंचायत को लेकर विभिन्न शंकाओं और आपत्तियों पर जारी स्पष्टीकरण के अनुसार नगर पंचायत का उद्देश्य बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए सड़क स्वच्छता, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का बेहतर विकास सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तवांग मठ की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूमि स्वामित्व, सामुदायिक एवं पारंपरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अनुसूचित जनजाति यानी ST प्रमाण पत्र सहित अन्य सरकारी दस्तावेज पहले की तरह जारी होते रहेंगे। नगर पंचायत क्षेत्र में लागू कर एवं शुल्क केवल प्रचलित कानूनों के अनुसार ही लगाए जाएंगे। वहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ संबंधित योजनाओं के पात्रता मानदंडों के आधार पर मिलता रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट जानकारियों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया है कि जनता द्वारा प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर अंतिम निर्णय से पहले उचित विचार किया जाएगा। सूचना समाप्त हुआ। श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम जेदुन लेरिम में सुनिए गेलोंग जंपा सोनम उमजे और भिक्षु गणों से चंद बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर हमारे विशेष प्रसारण में सुनिए तवांग जिला फुटबॉल संघ के आयोजक अध्यक्ष सह सचिव श्री कोंचो टाशी से मेरा लामा लोटरे ग्यात्सो स्वतंत्रता कप 2026 के 33वें संस्करण के आयोजन के संबंध में हुई भेंट वार्ता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण में सुनिए प्यासा सावन, फकीरा कभी अजनबी थे और लव इन टोक्यो फिल्म से गायिका लता मंगेशकर द्वारा गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमे आज शाम 7:20 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमीय तराने में सुनिए खेले हम जी जान से फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 25 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए सुरेश वाटकर के आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत कल दोपहर 2:30 पर। चंद लादा की लोक गीतों का आनंद लीजिए जिग्मे दुर्जी और साथियों के आवाजों में कल दोपहर 3:00 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग तवांग के 10वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी छुएनक जांगमो से बदलते समय में जागरूकता के महत्व विषय पर एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए स्टूडेंट

द ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर, आई हेट लव स्टोरी फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल और कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफी के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:33 पर फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए थ्री इडियट्स फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल, जब वी मेट फिल्म से शान और उस्ताद सुल्तान खान, किस्मत कनेक्शन फिल्म से अतीफ असलम और अलका याग्निक, मुन्ना माइकल फिल्म से सुनिधि चौहान और विशाल मिश्रा, बागी फिल्म से मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स, एक विलन फिल्म से अंकित तिवारी, गुमराह फिल्म से जारा खान, अरमान मलिक और सलमा आगा, शहजादा फिल्म से शाश्वत सिंह और शालमाली खोलगाड़े, अनजाना अनजानी फिल्म से शेखर रवजियानी और कैलरिसा मोंटियरो और गजनी फिल्म से जावेद अली और सोनू निगम के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए पंडित आर के सूर्यनारायण से गायत्री वीणा वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोदाने की तरह मनपा कार्यक्रम नमथर लेर में सुनिए महामहिम टुल्कु तेंजिन ग्युरमे रिम्पोछे जी से बोधिसत्व के जीवन मार्ग पर आधारित शिक्षाओं के श्रृंखला का शेष भाग कल शाम 5:00 5:30 दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 5:35 पर कार्यक्रम मोनपा लोकगीत में आनंद लीजिए श्री टाशी त्रिंग और ग्यांकर गांव के मंडली द्वारा अच्छी फसल के लिए स्थानीय त्योहार पर आधारित चंद मोनपा लोकगीत। लेरिमसेडा शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बोध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदोन लेरिम में सुनिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय शारो के छात्रिका कुमारी तिंजिन यांगजुम और साथी छात्रों से चंद बौद्ध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर स्वास्थ्य संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुनिए जिला अस्पताल तवांग के एनसीडी सेल की मनोवैज्ञानिक सुश्री लोपसांग युटन से तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों पर विषय पर एक भेंट वार्ता। दुनोर गीतों का कार्यक्रम साजोर आवाज कल शाम 7:32 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमीय तराने में सुनिए 10 फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील कल रात्रि 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

Allah'ın

0: Sangyana Siddhata Shedun Nerema Tawang Gombak Umze Genong Jampusanam Si Krishdano Shedun Junjik Sumpa Ning Manladano Sanambar Sangyana Uttamache Lungting Kangtawang Tishnabduk Shedun Lerin Ning Manbak Lerin Banang Chasantidur Lungting Kangtawang Nabtuchuze Nisong Sasani Sangyana Dashubu Lerim Akashwani Dilikari Leshisu Hindi Ga Singur Ning Chuze Nisnan Karmelingache Inchi Ga Singur Sanangsa
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक के अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल रेल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में आज भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इससे पहले रवि वीरा वेंकट बुद्धिगीना और अली इमाम ने पैरा तैराकी के S13 वर्ग के 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी के फाइनल में अपना अपना स्थान पक्का किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. The Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices.

0: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में इस विशेष चर्चा में शामिल है तवांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन कम सेक्रेटरी श्री कुंजुक टाशी जी। तो कुंजुक टाशी जी, आपका एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू।
0: जैसे कि हमारे तवांग में हर वर्ग के लोग, विशेष रूप से फुटबॉल खेल को बेहद पसंद किया जाता है और हर साल मेरक लामा लॉटरी गेट्सो इंडिपेंडेंस कप तवांग में खेला जाता है और पिछले कुछ सालों से हम इस सिलसिले में कुंजुक टाशी जी से जुड़े हुए हैं। अब हमारे ये कार्यक्रम जो है कैलेंडर कार्यक्रम की तरह बने हुए हैं आपके साथ और आप सभी ने हमारे पूर्ण जो कार्यक्रम हमने प्रसारित किए थे उसे भी ढेरों प्यार दिए थे, आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ मैं साथ साथ में। और आज फिर हम आगामी 26 जुलाई 2026 से शुरुआत होने वाले 33वां मेरक लामा लॉटरी गेट्सो इंडिपेंडेंस कप को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुंजुक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 33वां मेरक लामा लॉटरी गेट्सो इंडिपेंडेंस कप की तैयारियां जो है किस तरह से करे हुए हैं और अब की बार कितनी टीमें भाग लेने जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में।
1: जी, सबसे पहले तो टाशी दिलेख, इस बार का टूर्नामेंट हमारा 33rd एडिशन है मेरक लामा लॉटरी गेट्सो। तो हमारा टूर्नामेंट में इस बार कुल 14 टीम्स है मेंस फुटबॉल का, एंड देन वुमेन्स फुटबॉल का हम लोग का 7 टीम है। और इनका 26 जुलाई से जो हमारा कारगिल विजय दिवस होता है,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: वहाँ से स्टार्ट होंगे, उसके बाद 15th ऑफ अगस्त में हमारा फाइनल हो।
0: तो इंडिपेंडेंस कप जो है हर साल हमने देखे थे कि 26 जुलाई से ही शुरुआत करते हैं, तो उस दिन को जो कि कारगिल विजय दिवस है, सन 1999 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुए थे और उस युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त किए थे, तो इस विजय दिवस को मनाते हुए इंडिपेंडेंस कप की शुरुआत भी करते हैं। और अब की बार टीमों की सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है किस तरह से किया गया, चयन मानदंड जो है किस तरह से किया गया?
1: टीम्स का तो सिलेक्शन प्रोसेस वैसा ही है पिछले की तरह है। हमारा 4 हायर प्लेयर्स होंगे, जो तीन प्लेयर जो खेल सकता है और एक सब्स्टिट्यूट में रहेगा। और उसमें फिर ऐसा है कि तवांग डिस्ट्रिक्ट के बाहर से जो है यहाँ पे जो जॉब कर रहा है तो उन लोग का ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर होना चाहिए जो जॉब कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 साल नहीं हुआ तो वो खेल नहीं सकते, वो खेल सकते हैं बट एज अ हायर प्लेयर खेल सकते हैं। और उसके बाद अगर उनको खेलना है वो तो वो 1 साल के बाद वो एज अ लोकल प्लेयर खेल सकते हैं। और इंस्टीट्यूट में देखा जाएगा तो जो स्कूल स्टूडेंट है एंड देन कॉलेज स्टूडेंट है जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर से, अगर उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया है तो उनका एडमिशन का जो रिसिप्ट वगैरह होता है एंड देन आईडी कार्ड वगैरह चेक करके तो हम एज अ लोकल प्लेयर उनको खेलने देते हैं,
0: यहाँ के स्थानीय उनको माना जाएगा।
1: जी जी। और इस बार तो हायर प्लेयर्स हमारे अरुणाचल से कम, जो आउट ऑफ स्टेट से बहुत लोग हैं, जो ISL प्लेयर्स भी है, आई लीग प्लेयर भी है और इंडिया में जो नेशनल टीम में रिप्रेजेंट करते हैं अंडर 19 अंडर 23 के प्लेयर्स भी है और साथ में कोचेस भी काफी अच्छे कोचेस बाहर से आए हैं।
0: कि मैंने शुरुआत में जिक्र की थी कि हमारे यहाँ के लोग जो है फुटबॉल खेल को बेहद पसंद करते हैं, छोटे बड़े हर वर्ग के लोग टूर्नामेंट देखने के लिए आएंगे। इंडिपेंडेंस कप जो है बहुत ही बड़ा एक टूर्नामेंट है, तो इसे आयोजन करने में तवांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन अकेले इसके आयोजन करना शायद थोड़ी सी मुश्किल होते होंगे, तो क्या फिर भी आप तवांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन अकेले ही इसके आयोजन कर रहे हैं या फिर आपके साथ कोई और सहयोग है?
1: जैसे आपने कहा कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट और ये हमारा कैलेंडर इवेंट जैसा ही है और ये टूर्नामेंट के लिए काफी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं पूरे साल। तो इसमें ऐसा है कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें देखा जाएगा तो इस बार हम लोगों ने 25 प्लेयर्स एक टीम में रख सकते हैं, तो ऐसे करेगा तो यहाँ पे बहुत सारा एथलीट्स लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है तो इसको संभालना एक एसोसिएशन को अदर हेल्पिंग हैंड्स नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एज अ हेल्पिंग हैंड हम लोग ने इन कोलेबोरेशन विद ऑर्गेनाइज तो तवांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ही कर रहे हैं अंडर द एजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन, फिर एड ऑन उसमें देखा जाएगा तो इन कोलेबोरेशन विद तवांग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो 2024 तक TDSA ही करता था और लास्ट ईयर से हमारे ऑनरेबल CM सर का कंसर्न में सर ने एज अ चेयरमैनशिप मुझे ये लीड करने को कहा, तो तवांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के बैनर में तो उसमें हम लोग इन कोलेबोरेशन विद TDSA, इसके बाद तवांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन हमारा इंडियन आर्मी को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें।
0: ये तो रही तैयारियां और कितनी टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल होने जा रहे हैं। और अब रही रेफरी की बात, तो रेफरी जो है अब की बार भी बाहर से आ रहे हैं या फिर यहीं के नियुक्त कर रहे हैं?
1: ये हमारा 2019 से हमारा रेफरीज जो है हमारा बाहर से ही आते हैं।
0: हाँ जी।
1: जो हमारा अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन में बहुत सारा कमिटी होता है।
0: हाँ जी।
1: तो उसमें अरुणाचल प्रदेश रेफरी कमिटी है

0: जो हम लोग हमेशा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ कोलैबोरेट करके हम लोग कोर्सेज वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग रेफरीज वगैरह सेलेक्ट करते हैं, तो वहीं से अरुणाचल प्रदेश रेफरी कमेटी से ही हमारा रेफरीज इस बार भी 8 रेफरीज और 1 मैच कमिश्नर अपॉइंट कर रहे हैं।
1: और आगे आपसे बहुत सारे चर्चा करने को है, पर अब हम चर्चा करते हैं आने वाले 26 जुलाई 2026 को जो कि उद्घाटन समारोह होने जा रहे हैं, तो उस दिन को क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और इनॉगरल मैच किन टीमों के बीच खेले जाने वाले हैं?
0: कि हमारा पिछले साल हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो जिन्होंने प्रॉपर हम लोग हमारे में एक काउंटडाउन बोल के होता है, जैसे कि पहले ऐसा होता था कि हमारा 11 बजे फुटबॉल मैच हो रहा है तो किक ऑफ टाइमिंग 11 बजे दिया है लेकिन 12 बजे शुरू होता है, पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि मैं एक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का एक मैच कमिश्नर भी हूँ सर्टिफाइड, तो पिछले साल से मैंने फर्स्ट टाइम एक काउंटडाउन फॉर्मेट में शुरू किया, जैसे कि 11 बजे का हमारा मैच टाइमिंग है तो वो एग्जैक्ट 11 बजे ही शुरू होगा, क्योंकि फुटबॉल में एक ये हम लोग बहुत रिजिड रहना होता है हमें, क्योंकि पिछले बार हमारा जब साफ टूर्नामेंट हुआ था उसमें हमारा चीफ गेस्ट गवर्नर था, तो गवर्नर आते वक्त क्लोजिंग सेरेमनी में लेट हुआ था, तो उन काउंटडाउन फॉलो हमें करना होता है, तो गवर्नर का लेक्चर भी हाफ टाइम में देना पड़ा उनको, तो इसी तरह तो हम लोग ये फॉर्मेट यूज करते हैं, काउंटडाउन कहते हैं जिसको, हम लोग 3 घंटे सपोज 11 बजे का मैच है तो हम लोग का काउंटडाउन 8 बजे से शुरू हो जाता है, तो 8 बजे से हमें प्रिपरेशन करना होता है, तो इसी तरह है। और हमारा कल्चर वगैरह भी होगा, ज्यादा नहीं, हमारा एक दो कल्चर पहले की तरह नहीं है कि बहुत सारा कल्चर कर दिया, प्लेयर्स को वार्म अप करने का टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं है, तो हमारा कल्चर भी बहुत ही लिमिटेड रहेगा, स्पीच वगैरह भी लिमिटेड रहेगा, और हमारा चीफ गेस्ट हमारा तवांग का ZPC हमारा श्री लेकी गुम्बू सर है,
1: क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में अनुशासन का होना सबसे जरूरी होता है, है ना? जैसे कि 26 जुलाई से लेकर जो फाइनल मैच तक कितने मैच बीच में खेले जाने वाले हैं आपके 12 टूर्नामेंट में?
0: हमारा टोटल वुमेन्स और मेंस फुटबॉल दोनों को मिला के करीब 40 मैचेस होने जा रहे हैं हमारा, तो हमारा 26 जुलाई को हमारा एक ही मैच होगा जो हमारा लास्ट टाइम का जो डिफेंडिंग चैंपियन है मोन्यूल और हमारा जो खरसनेंग का जो क्लब है युपा स्पोर्ट्स क्लब, उन दोनों के बीच हमारा ओपनिंग मैच होगा। 2 अगस्त से हमारा गर्ल्स का भी मैचेस शुरू हो जाएगा एंड देन दोनों का फाइनल मैच हमारा 15 अगस्त को होगा, 11 बजे मॉर्निंग में गर्ल्स का होगा एंड देन शाम के 4 बजे बॉयज का होगा।
1: मैच भी काफी ज्यादा खेले जाने वाले हैं इस टूर्नामेंट में, टीमें भी बहुत सारे हैं, लोग बहुत सारे लोग आएंगे देखने के लिए। क्या है कानून व्यवस्था जो है अच्छी होना पड़ता है, तो अगर कानून व्यवस्था में कोई समस्या मैच के दौरान या टूर्नामेंट के दौरान होते हैं तो आप किस तरह से संभालते हैं?
0: अभी तो मैं देखा जाऊंगा तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है तो लॉज ऑफ द गेम एंड देन ये जितना भी बायलॉज वगैरह को देखा जाएगा, तो मैंने काफी टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक भी मैंने किया है, तो बायलॉज वगैरह में तो ऐसे कुछ डिफिकल्टीज तो नहीं आना चाहिए। एंड देन सभी को पता है अगर रेफरी ने जो डिसीशन दे दिया उसको हम लोग फिर से चेंज नहीं किया जाता है, तो ये सबको पता है और ये सबको फॉलो करना होता है, और पिछले बार भी कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट कुछ हुआ था जिन्होंने डिसीशन वगैरह पर, कुछ भी हो जाए हम डिसीशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी को ही भले वो सही हो गलत हो वो अगर रेफरी ने आपको दे दिया तो वो फॉलो करना ही होगा, तो ये आप लोग सब जितने भी एथलीट्स है इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग डिसीशन को हम कभी चेंज नहीं कर सकते।
1: अच्छा, फिर बाद में किसी को लगे उनके ही नहीं हुए तो भी बदलाव उसमें कभी नहीं आ सकते हैं।
0: जी नहीं, अगर मैच को अगर आप शुरू कर दिया है डिसीशन देने के बाद तो आपको खेलना ही पड़ेगा अंत तक, और मैच खत्म होने के बाद भी अगर जितना भी आप लोग ऑब्जेक्शन वगैरह होता है ऐसे आप लोग लेके आओगे तो भी वो चेंज नहीं हो सकता है, वो सभी को पता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार बहुत अच्छे प्लेयर्स भी है एंड देन बहुत अच्छे कोचेस भी है, तो वो अपने जितने भी प्लेयर्स है एंड देन जो सपोर्टर्स है उनको आप समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से, तो इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होना चाहिए, पूरी तरह भरोसा है।
1: और जितने भी टीम के चयन हुए हैं इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए, तो उनको अपने ओर से एंट्री फी कितने देने पड़े आपके बार?
0: एंट्री फीस तो हम लोगों ने इस बार नहीं बढ़ाया है, जैसे पिछले बार था जो हमारा 10,000 एंट्री फीस होता है एंड देन 5,000 हमारा एज ए सिक्योरिटी मनी होता है। तो सिक्योरिटी मनी जो क्या होता है कि बहुत सारे मैचेस होता है तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स इनडिसिप्लिन वगैरह दिखाते हैं जिसमें हम लोग येल्लो कार्ड एंड रेड कार्ड देते हैं, तो उस पर हम लोग येल्लो कार्ड पे 500 माइनस करते हैं एंड देन 1,000 हम लोग एज अ रेड कार्ड पे हम लोग पेनल्टी लेते हैं। और इसी तरह गर्ल्स का भी देखा जाए तो गर्ल्स का भी हम लोगों ने पिछले बार तक फ्री ही किया था, इस बार हम लोग 5,000 रुपए, 3,000 उनका एंट्री फीस और 2,000 उनका सिक्योरिटी मनी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस बार गर्ल्स को भी भेदभाव नहीं करते हुए उनका भी हम लोग ने प्राइज मनी बढ़ाया है, 1,00,000 उनका विनिंग प्राइज है।
1: पहले हमने देखे थे कि जब जो भी लोग बाहर से मैच देखने

0: ले आएंगे तो स्टेडियम के अंदर जाने के लिए टिकट्स लगते थे, तो अब की बार ऐसे व्यवस्था है या नहीं?
1: पिछले बार टिकट सिस्टम हम लोगों ने रखा था तो वो अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत बड़ा इशू बन गया था।
0: अच्छा।
1: मुझे काफी एसोसिएशन से भी फोन आया था, तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग वही कर रहे हैं कि हम लोग टिकट सिस्टम को टोटली फ्री कर रहे हैं, तो स्टेडियम के अंदर आने के लिए आपको टिकट नहीं लगेगा। पर इस माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि टिकट सिस्टम जो हमें थोड़ा बहुत, क्योंकि करना भी होता है, क्योंकि हमें इससे क्या होता है कि रेवेन्यू जनरेट होते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट में तो स्पॉन्सर हो जाता है, लेकिन जब हमें स्टेट लेवल के लिए टीम्स को भेजना होता है, देन ट्रायल्स में भेजना होता है, तो हमें फंड्स का जरूरत होता है, तो उस पे मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है। तो मैं सोचा था कि कुछ वहां से टिकेटिंग से रेवेन्यू जनरेट होगा तो हमारा थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल भी होगा, पर हमारे यहाँ पे जो वो ट्रेडिशन को लाने के लिए लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, तो वही है बस
0: जी। और जैसे आपने बताया कि महिला टीम है, उनके जो विजय प्राप्त करने वाले विजेता को 1,00,000 रुपए धनराशि मिलेंगे, तो जो पुरुषों के लिए टूर्नामेंट है इसकी विजेता के लिए कितने प्राइस मनी रखे हैं?
1: जी, पहले हम लोगों ने 2023 में 2,00,000 था, तो 2025 में लास्ट ईयर हम लोगों ने उसको बढ़ा के 2,50,000 रखा था, 2,50,000, तो इस बार हम लोग इसको और 50,000 बढ़ा के हम लोगों ने 3,00,000 का विनिंग प्राइस रखा इस बार मेंस फुटबॉल में।
0: जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ के युवाएं जो है फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलते हैं, रुचि रखते हैं, तो उनके जो खेल टूर्नामेंट में भाग लेना जो है तवांग तक सीमित नहीं है, वो बाहर भी जाना चाहेंगे, तो इस दौरान आप जैसे कि हमने सुना कि तदर तांग ट्रॉफी भी खेलने जा रहे हैं, तो इस दौरान आप कोई स्काउटिंग वगैरह करते हैं इस बीच में प्लेयर्स के?
1: जी, अभी तो हमारे तवांग से काफी प्लेयर्स है जो एकेडमीज में है, कोई अलग क्लब्स में भी खेल रहा है, तो बहुत सारा अपना लोकल प्लेयर्स भी है, तो इस बार हम लोग का तादर तंग जो ये सितंबर में होने जा रहा है, तो हमारा जोन जो है जोन सी है, थर्ड जोन है, तो उसमें हमारा लोअर सुबनसिरी जीरो में होगा, तो साथों साथ सब डिस्ट्रिक्ट पे तो टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे स्काउटिंग ट्रायल्स वगैरह रख रहे हैं, पर हम लोग का तो टूर्नामेंट ही हो रहा है, तो इससे अच्छा हमें प्लेटफॉर्म और क्या चाहिए, तो हम लोग इसी में टूर्नामेंट के जरिए ही हम लोग स्काउटिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद हम जल्दी लिस्ट आउट करेंगे। इसके बाद हम लोग 15 अगस्त के बाद हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट का टीम को शॉर्ट लिस्ट करके हम लोग उनको कैंप भी हम लोग शुरू करेंगे फॉर तातर तंग स्टेट लेवल।
0: और आप एक अनुभवी कोच होने के नाते अरुणाचल से बाहर आप कई बार जाते हैं, मैचेस देखते हैं, टूर्नामेंट में शामिल होते हैं, तो आपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग खिलाड़ियों को देखते हैं, तो अब जब तवांग में आकर हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को देखते हैं, तो पहले की तुलना में उनके जो कौशल विकास है उसमें क्या फर्क आपको नजर आए अब तक?
1: जी, अभी तो पहले ऐसा था कि पहले जब हम खेलने जाते थे तो सबको लगता था अरे तवांग तो आया लीग मैच खेल के चला जाएगा, पर अब ये कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो चुका है, ये बहुत सारा प्लेयर्स है हम लोग जो बाहर भी खेलते हैं, तो और हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो काफी अच्छा रिजल्ट दिया है काफी, और मैंने भी बहुत बार तवांग टीम को, अभी मेरा समय नहीं होने के कारण मैं अभी टीम को लेके तो नहीं जाता हूँ, कंपटीशन वगैरह मैनेज करता हूँ, लेकिन मैंने भी लेके गया तो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सेमीफाइनल तक भी पहुंचे हम लोग स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स में, एंड देन गर्ल्स का देखा जाए तो गर्ल्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स भी जीता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टूर्नामेंट्स में हमारे बच्चे जो हमारा मेंस टीम है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मुझे स्काउटिंग में बहुत अच्छा प्लेयर्स भी मिलेंगे हमारे लोकल रीजन से।
0: और तदर तांग में जो महिला टीम भी भाग ले सकते हैं?
1: नहीं, महिलाओं के लिए उनका अलग टूर्नामेंट होता है।
0: अच्छा।
1: अभी वुमेन चैंपियनशिप भी होते हैं, इस बार हमारा फर्स्ट वुमेन चैंपियनशिप हुआ है हमारा स्टेट लेवल में, इसमें खुशी की बात ये कि जो क्लब जीता है वो हमारे तवांग से ही था, मोनिल एफसी ने जीता है, और उसमें हमारा दो गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर रहा था, बट देन अनफॉर्चुनेटली उनका कुछ इश्यूज रह गया, तो इसलिए वो हमारे तवांग से प्लेयर्स नहीं हो पाया, अदरवाइज हमारे तवांग से भी होना था, और हमारे गर्ल्स में काफी प्लेयर्स है जो एवरी ईयर हमारा जितना भी टीम्स नेशनल लेवल में जो परफॉर्म करते हैं स्टेट टीम से, वहां पे हमारा गर्ल्स का काफी प्लेयर्स है, सब जूनियर में है, जूनियर में है, इवन सीनियर में भी दो प्लेयर्स हमारा इस बार नेशनल में रिप्रेजेंट किया था स्टेट के लिए।
0: और हमारे चर्चे में मैंने पहले भी जिक्र किया कि इंडिपेंडेंस कप जो है बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, तो इस दौरान बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है आएंगे, तो कचरे बहुत सारे फैलाने की संभावना है, तो सरकार हमें हर बार ये शिक्षा देती है स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे आसपास में हर जगह स्वच्छता बनाए रखने है, तो टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम और आसपास की जगहों पर स्वच्छता किस तरह से बनाए रखने जा रहे हैं?
1: जी, इंटरनेशनल लेवल में भी आप लोगों ने देखा है, और हम लोग जब भी हम लोग तवांग वाला टीम एज अ टीम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम लोग हमेशा कहीं भी जाते हैं हम लोग अपना जो गंदगी है उसको हम लोग हमेशा साफ करके ही आते हैं, तो तवांग एक हमेशा एग्जांपल रहा है, जितना भी टूर्नामेंट्स होता है वहाँ पे, मैं खुद कितने बार साफ किया स्टेडियम्स को, काफी स्टेडियम्स को, तो इसी तरह इंटरनेशनल में भी देखा

0: जाएगा तो बहुत सारे टीम्स के ऑडियंस वगैरह वो साफ करके जाते हैं स्टेडियम को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको स्टेडियम साफ करना है ना, तो मैं यही कहता हूँ कि जितना एटलीस्ट गंदगी रैपर्स वगैरह जो है, अभी बहुत गर्मी है, कोई जूस लेके आता है, कोई पानी लेके आता है, एंड देन चिप्स वगैरह खाने के लिए, क्योंकि दो मैचेस होता है, तो मैं यही कहता हूँ कि जो प्रॉपर जो जगह है, जो डस्टबिन है, हम लोग डस्टबिन रखेंगे तो वहीं पे ही आप लोग फेंकिएगा, बाकी जो उसको डिस्पोज करना है, जो करना है, वो हम लोग का ड्यूटी हम लोग करेंगे। जैसे कल MMT हमारे मोनपा मीमंग सोपा के सोशल सर्विस सेक्रेटरी ने भी एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, जो बहुत मीनिंगफुल था। उन्होंने भी कहा था कि अभी 26 जुलाई से हमारा टूर्नामेंट शुरू होगा, तो आप लोग जितना भी गंदगी है उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से जहां पे फेंकने का जगह है वहां पे फेंकिए, एटलीस्ट अगर इधर उधर नहीं फेंकिए, और अपना जो प्रॉपर जगह है अगर घर पे भी ले जाके अच्छा से डिस्पोज कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे कमेटी में कितना ही होगा और डिपार्टमेंट के लेबर्स लोग को हम लोग कितना ही काम लगाएंगे ना, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम होता है, यही चीज है। और लास्ट टाइम हमारे सेरू विलेज ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, उन लोगों ने 14 अगस्त में आके इतने अच्छे तरीके से साफ किया था, सिर्फ स्टेडियम को नहीं, स्टेडियम के बाहर चारों तरफ जो हमारे रोड है उनको भी साफ किया था। तो मैं लास्ट ईयर भी मैंने थैंक यू कहा था, तो इस माध्यम से मैं इस बार भी मैं थैंक यू कहूंगा सेरू विलेज को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए। तो यही है, एटलीस्ट आप लोग गंदगी को इधर उधर मत फेंकिए, एटलीस्ट जो जगह है वहां पे आप लोग फेंक दीजिए डस्टबिन में, जो डिस्पोज करना एंड देन साफ करना वो हमारा कमेटी का ड्यूटी है।
1: जी, और आप 33वां मेरा ग्लामा लॉड्रिगेस इंडिपेंडेंस कप टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है, आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं, व्यस्त होने वाले हैं, उसके बावजूद आपने आज हमारे आकाशवाणी तवांग में अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आए और बहुत सारे हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: थैंक यू।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे तवांग जिला फुटबॉल संघ के आयोजन अध्यक्ष सह सचिव श्री कोंचो टाशी से मेरा लामा लॉटरी ग्यात्सो स्वतंत्रता कप 2026 के 33वें संस्करण के आयोजन में संबंधित हुई एक भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे दोर्जी ड्रेमा। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:27 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। कार्यक्रम दर्पण में आज आप सुनेंगे प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर द्वारा गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमे। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, बोल संतोष आनंद के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, दर्पण कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए फर्स्ट लव लेटर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, बोल अनजान के और संगीतकार बप्पी लहरी।

फर्स्ट लव लेटर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीनों में सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि इस मामले के दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कल जारी वीडियो संदेश

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करनी थी कि छात्रों का एक भी शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो, इसलिए परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि ये लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने कल संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। विभागों ने लगातार कार्य करते हुए देर रात उन्हें इसका मसौदा सौंपा है। उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों और दोषियों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे में

0: सरकार इस विधेयक को यथाशीघ्र सदन के में पारित कराने का हर संभव प्रयास करेगी। रिवॉच गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. जोराम बेगी के नेतृत्व में आज ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। इस दौरान रिवॉच को विश्व के प्राचीन परंपराओं, संस्कृतियों और विरासत के विश्वविद्यालय यू वॉच के रूप में विकसित करने के विजन पर चर्चा की गई। इसे स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों, पारंपरिक संस्कृतियों, विरासत अध्ययन तथा सतत जीवन शैली के संरक्षण, अध्ययन और संवर्धन में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना बनाई गई है। राज्यपाल ने रिवॉच के 15 वर्षों की उल्लेखनीय यात्रा तथा अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुसंधान, प्रलेखन, संरक्षण और संवर्धन में अग्रणी योगदान की सराहना की। शिक्षा राज्य मंत्री PD सोना ने आज जिला परिषद सदस्यों और ग्राम पंचायत अध्यक्षों के साथ एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जमीन स्तर पर शासन को सशक्त बनाने और गांवों के विकास में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा की गई। श्री सोना ने कहा है कि पंचायती राज प्रतिनिधि जनता के लिए प्रथम संपर्क बिंदु होते हैं और उनसे ईमानदारी, प्रतिबद्धता तथा जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आग्रह किया। बैठक में कृषि एवं बागवानी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य योजनाएं, आधार नामांकन, सड़क संपर्क, वन संरक्षण तथा जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय सेना ने अपर सियांग जिले के तोतिंग में शौर्य संबंध कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले पूर्वी सैनिकों से जुड़ना था, जहाँ कल्याणकारी सेवाओं की पहुँच सीमित रहती है। कार्यक्रम में केंद्र सरकार और भारतीय सेना की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, पेंशन संबंधी लाभ, स्वास्थ्य सुविधाओं, वित्तीय सहायता, पुनर्वास के अवसरों तथा पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों के बारे में भी विशेष रूप से जागरूक की गई। प्रतिभागियों को इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई, ताकि वे अपने सभी वैध अधिकारों का लाभ उठा सके। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने आज उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय निगरानी समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने अपने मुख्यालयों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की जवाबदेही और उपलब्धता के महत्व पर भी विशेष बल दिया। देहरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर ने आज नेसो फ्यूजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को इंटर्नशिप, औद्योगिक अनुभव तथा परियोजना कार्य के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा कार्यशालाओं, संगठनों, शिक्षक एवं छात्र विनियमन कार्यक्रमों तथा अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे छात्रों और शिक्षकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि होगी। इस साझेदारी का एक प्रमुख उद्देश्य जैविक खेती, सतत कृषि पद्धतियों तथा ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है। मोन्यूल FC ने कल UPI स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में आयोजित अरुणाचल महिला फुटबॉल लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया। वही कुरुंग कुमेई जिला फुटबॉल संघ उपविजेता रहा। पुरस्कार वितरण समारोह में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कोषाध्यक्ष तथा अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के अध्यक्ष की बाजे सहित APFA के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन ओवर द पास्ट 2.5 मंथ्स सिंस द पेपर लीक इंसिडेंट। He said the culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, the Prime Minister said the government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations at the earliest. PM Modi said that yesterday he directed the concerned departments to prepare a proposal for fast-track courts. Mr. Modi said that as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. The Governing Council of Rewatch, led by its chairman Dr. Joram Beghi, called on the Governor, Lieutenant General KT Parnayak, at Lok Bhavan, Itanagar today. They discussed the vision of elevating Rewatch into the university.

सुहेल सेन और साथियों के इस देशभक्ति नगमे के साथ ही कार्यक्रम कौमी है तराने अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं अब सुनिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवकर, निर्मला नवकर और विशाल नवकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपन ताइडे और आशीष मुरेकर ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है अमानत फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया गीत, बोल साहिल लुधियानवी के और संगीत रवि शंकर का।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है अशोक श्याम कुनवार, प्रमिला श्याम कुनवार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुनवार और अनुश्री श्याम कुनवार से पराया धन फिल्म के नगमे का। इस नगमे को लिखा है आनंद बख्शी ने, गाया किशोर कुमार ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक के फरमाइश पर सुनिए राजकुमार फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत। शंकर जयकिशन द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

अगला नगमा पेश है बावी निमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंदाली और उषा गोंदाली, कोपरगांव महाराष्ट्र से सुरेश मलोडे और वर्षा मलोडे के फरमाइश पर सुनिए धरती फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया गीत, गीतकार हजरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है नरगोडा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल टिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। आप सभी के फरमाइश पर पेश है अनुराग फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया नगमा। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है सचिन देव ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र।
1: और मैं हूं प्रशांत कुमार।
0: स्पोर्ट्स कैन के आज के इस अंक में आप सभी का हम दोनों स्वागत करते हैं। हम एक बार फिर मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। पहले हेडलाइंस।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष लाइटवेट वर्ग में अशोक चौथे स्थान पर रहकर पदक से चूके। श्रीहरि नटराज ने पुरुषों के 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हांगझोउ में ISSF विश्व कप में संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता। अनहत सिंह ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के वुमेन सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच कल हरारे में खेला

0: जाएगा और सितंबर में उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए भारत की महिला और पुरुष टीम की घोषणा हुई।
1: और अब खबर विस्तार से। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष लाइटवेट वर्ग में भारत के अशोक चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इसी वर्ग में परमजीत सिंह को छठा स्थान मिला। अशोक ने कुल 143.8 जबकि परमजीत ने 135.6 अंक हासिल किए।
0: धर्मेंद्र, भारत के आज दूसरे दिन तैराक श्रीहरि नटराज ने राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में संयुक्त 14वें स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। दो बार के ओलंपियन और कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके नटराज ने 25.52 सेकंड का समय लिया। उन्होंने बरमूडा के जैक हार्वे के साथ संयुक्त 14वां स्थान हासिल किया। सेमीफाइनल के लिए हीट से शीर्ष 16 तैराकों का चयन किया गया। नटराज अपनी 8 खिलाड़ियों वाले हीट में 5वें स्थान पर रहे। सेमीफाइनल आज देर रात खेला जाएगा। उधर पैरा तैराकी में आरवीवी के बीके बुदगियाना और इमाम अली ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 वर्ग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हीट में हिस्सा लेने वाले सभी 8 तैराक फाइनल में पहुंचे। बुदगियाना ने 57.1 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया जबकि इमाम अली 1:05.32 सेकंड के समय के साथ 8वें स्थान पर रहे। S13 वर्ग दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए निर्धारित पैरा तैराकी श्रेणी है।
1: और प्रशांत, पैरा पावरलिफ्टिंग में जसप्रीत कौर और सुमन देवी महिला लाइटवेट वर्ग में पदक स्पर्धा में इस समय वजन उठा रही हैं और इस समय जो जानकारी है उसके अनुसार सुमन देवी रैंक में पहले नंबर पर चल रही हैं। उधर लॉन बॉल्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की थाबेलो मुवांको और जैकी वैन रेहन्सबर्ग के साथ महिला डबल्स वर्ग के दूसरे दौर में चल रहा है। भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे जिम्नास्टिक्स में पुरुष टीम फाइनल की पदक स्पर्धा होगी। रात 10:30 बजे लॉन बॉल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड द्वीप समूह के सेसिल अलेक्जेंडर के साथ पुरुष सिंगल्स वर्ग के दूसरे दौर का मैच खेलेंगे। रात 10:40 पर पावरलिफ्टिंग में महिला हेवीवेट वर्ग में कस्तूरी राजमणि पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। रात 11 बजे बॉक्सिंग में जदुमणि सिंह स्कॉटलैंड के आरोन कुलेन से पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 मैच में मुकाबला करेंगे। भारतीय समय के अनुसार रात 12 बजे पैरा तैराकी में आरवीवी बीके बुदिगिना और अली माम पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 फाइनल में उतरेंगे। 12:30 बजे श्रीहरि नटराज 50 मीटर बैक स्ट्रोक सेमीफाइनल में चुनौती पेश करेंगे। इसी समय पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार और सुधीर पुरुषों के हैवीवेट वर्ग की पदक स्पर्धा में दावेदारी पेश करेंगे।
0: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि देश के एथलीट ग्लासगो में हो रहे इस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में जुनून, पक्के इरादे और बेहतरीन खेल के साथ हिस्सा लेंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरू हो रहे हैं, भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि हमारे एथलीट गेम्स में जोश, पक्के इरादे और बेहतरीन खेल के साथ हिस्सा लेंगे। हमारे एथलीटों का हुनर और लगन हमेशा अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। और श्रोता, हम आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कल एक रंगारंग कार्यक्रम में हुई। गेम्स की शुरुआत का आधिकारिक ऐलान किंग चार्ल्स तृतीय ने किया। ग्लासगो 2014 के बाद एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने परेड ऑफ नेशंस के दौरान भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया। वेटलिफ्टिंग में भारत की ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई ने तिरंगा उठाया जबकि टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना ने सेरेमोनियल कॉमनवेल्थ बैटन उठाया। धर्मेंद्र, भारतीय दल पैरा स्पोर्ट्स समेत 13 खेलों में हिस्सा ले रहा है
1: जी। और एक अच्छी खबर हम आपके लिए बताएं कि नहीं है भारत के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की रजत पदक विजेता जूडो खिलाड़ी तुलिका मान को पिछले 12 महीनों में 3 बार रहने के स्थान की जानकारी देने में नाकाम रहने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इसके कारण उन्हें ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की भारतीय टीम से हटा दिया गया है। तुलिका ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 78 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में रजत पदक जीता था। इस बार भी वो पदक की प्रबल दावेदार थी। अब उन पर 2 साल के प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। वह ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से हटाई जाने वाली दूसरों जूडो खिलाड़ी हैं। कल एक अन्य भारतीय जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार को 73 किलोग्राम से कम वजन वर्ग से हटा दिया गया था क्योंकि वे प्रतियोगिता से बाहर की गई डोप जांच में विफल रह गए थे।

0: और अब बात स्क्वॉश पर भी कर लेते हैं। ओंटारियो में भारत की उभरती खिलाड़ी अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वॉश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए विमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर ओम सेमवाल, संदेश रवि कुमार और रतिका सिलान कड़े मुकाबले में जीत दर्ज करके आज पीएसए सिंगापुर चैलेंजर स्क्वॉश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।
1: विश्व जूनियर स्क्वॉश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह के खेल में धैर्य और कौशल का अद्भुत संगम देखने को मिला। महिला रैंकिंग में विश्व की 20वें नंबर के खिलाड़ी अनाहत ने अंतिम 8 के मैच में मिस्र की हबीबा रिज्क को 4 सेट तक चले मुकाबले में 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 से हराया। इस प्रतियोगिता में पिछले साल कांस्य पदक जीतने वाली अनाहत इस तरह से विश्व जूनियर चैंपियनशिप में लगातार 2 बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली बन गई है। दिल्ली की रहने वाली अनाहत का अगला मैच मिस्र की ही बार्ब समीह से होगा। उम्मीद है कि वह अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए न सिर्फ सेमीफाइनल जीतेंगी बल्कि इस बार खिताब पर भी अपना नाम दर्ज कराएंगी। उधर पीएसए सिंगापुर चैलेंजर स्क्वॉश टूर्नामेंट में भी भारत के पदक जीतने की बेहतर उम्मीद बनी हुई है। रवि कुमार ने पुरुषों के दूसरे दौर में जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त श्रोता यासुनश्री को 12-10, 11-5, 3-11, 11-7 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। चौथी वरीयता प्राप्त ओम सेमवाल ने स्थानीय खिलाड़ी आरोन लियांग को 5 सेट के कड़े मुकाबले में 11-9, 4-11, 4-11, 12-10, 11-8 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। महिला वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त रतिका को दूसरे दौर में स्थानीय प्रतिद्वंदी वायलिन ओ योंग पर जीत हासिल करने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। 5 सेट के मैराथन मुकाबले में रतिका ने 8-11, 11-9, 11-2, 7-11, 12-10 से जीत हासिल की। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: बात कर लेते हैं निशानेबाजी पर, जहां संयम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। चीन के हांगझाऊ में आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन प्रतियोगिता में भारत के पदक का खाता खुल गया है। संयम ने सटीक निशाना साधते हुए आज महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता।
2: पूर्व जूनियर वर्ल्ड और एशियन चैंपियन संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने पोडियम फिनिश पक्का करने के लिए फाइनल फायरिंग लाइन पर कदम रखने से पहले अपनी सीरीज में लगातार प्रिसिजन बनाए रखा। 22 वर्षीय संयम ने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर रजत पदक अपने नाम किया। वह गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट से चूक गयी। हांगझोंग में मिला यह सिल्वर मेडल संयम का दूसरा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप मेडल है। उन्होंने इससे पहले कतर के दोहा में हुए 2025 आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में भी महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। चीन की याओ किया नक्सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही, जबकि ईरान की ओलंपियन हनिया रोस्तमियन 221 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रही। हालांकि कई बार आईएसएसएफ वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीत चुकी सुरुचि सिंह फाइनल में कुल 137.6 पॉइंट के साथ 7वें स्थान पर रही। पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन में भावेश खावत भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे। उन्होंने 22वां स्थान हासिल किया। ओंकार सिंह, अनीश भनवाला, प्रदीप सिंह शेखावत और आदर्श सिंह भी क्वालिफाई नहीं कर सके। यहां पर हम आपको बता दें, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी साल के अंत में होने वाले आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो दिसंबर में रोम में होगा। हांगझोंग शूटिंग मीट एक संयुक्त आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन शूटर हिस्सा ले रहे हैं और यह प्रतियोगिता मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स स्कैन।
3: और अब बात क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 क्रिकेट मैच कल हरारे में खेला जाएगा। इससे पहले कल रात भारत ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ गरारी शिकस्त के बाद कल रात जिम्बाब्वे पर जीत के साथ भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सफलता की राह पर वापस लौटती दिख रही है। इस मैच में मयंक यादव की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते मेजबान टीम 7 विकेट पर सिर्फ 125 रन ही बना सकी थी। मयंक ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी के 19 गेंद में बनाए गए 50 रन की बदौलत भारत ने यह मैच आसानी से जीत लिया। मैच में वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 50 लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्यवंशी ने अर्धशतक लगाने के बाद अपनी मां के नाम आरती का पहला लेटर ए का साइन बनाया। अपनी इस पारी को वैभव ने बेहद खास बताया।
5: आपका जब करियर का स्टार्ट

0: बैटिंग फेज रहता है और इस तरीके के इनिंग्स अगर आपको मिलते स्टार्टिंग्स में और आप अच्छा करते तो कॉन्फिडेंस आता है नेक्स्ट मैचेस के लिए। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने जोन में हूँ और खुद के स्ट्रेंथ को मैंने बैक किया। फैमिली को डेडिकेट करूंगा, अपने कोचेस को डेडिकेट करूंगा, उन सबों को डेडिकेट करूंगा जिन्होंने मेरे जर्नी में मेरा साथ दिया है, सपोर्ट किया है मुझे हर अच्छे बुरे फेज में।
1: कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी युवा मयंक और वैभव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की।
2: एक्सेप्शनल स्टार्ट गिवन बाय मयंक, द वे ही बोल्ड इन terms of executing his line and lens, not giving them room to score runs. I think that set the rhythm for us, and then Webber coming in the power play giving us exceptional start. He's fearless youngster and the way he approached this innings was indomitable. I think he's played here before, so he's got a fair idea about how the wickets are. He's got 175 I guess in under 19 final, so definitely he possesses immense confidence when he steps onto the field, so you could see it today.
1: अब कल भारत के पास दूसरे मैच में जीत के साथ सीरीज में 2-0 की निर्णायक बढ़त लेने का मौका होगा। हालांकि ये काम इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि जिम्बाब्वे ने हाल ही में अपने घरेलू मैदानों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। जिम्बाब्वे की टीम भी जीत के लिए सब कुछ झोंक देगी, लेकिन इसके लिए उनके गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों को भी अपना शत प्रतिशत देना होगा। पहले मैच में हरारे की पिच तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी नजर आई थी। हालांकि क्रीज पर सेट होने के बाद बल्लेबाज भी आसानी से रन बनाते हुए दिखाई दिए। इस मैदान पर अब तक कुल 84 2020 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 45 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी है। वहीं 37 मुकाबलों में रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है। पहली पारी का औसतन स्कोर 155 रहा, वहीं दूसरी पारी का औसतन स्कोर 133 रन रहा है। कल हरारे में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है और बारिश होने की आशंका ना के बराबर है। ऐसे में एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
3: उधर जापान के अचिना गोया में 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा पुरुषों के मैच के साथ 24 सितंबर से शुरू होगी। इसमें मौजूदा चैंपियन भारत और पाकिस्तान के पुरुष और महिला क्रिकेट टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह दी गई है। धर्मेंद्र, भारतीय महिला टीम जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि पुरुष टीम का मुकाबला प्रारंभिक चरण के मैच के बाद तय होगा।
4: और क्रिकेट के मैदान से अब शतरंज के बिसात की तरफ चलते हैं। भारत ने 16 से 27 सितंबर तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए टीम की घोषणा कर दी है। ओपन वर्ग की टीम में विश्व चैंपियन डी गुकेश और शानदार फॉर्म में चल रहे आर प्रज्ञानंदा के अलावा अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरीन और विदित गुजराती शामिल हैं। सरीन 2024 में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे। महिला टीम में कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, विश्व विजेता दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री बी को शामिल किया गया। इसमें से हम्पी और सविता श्री 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में शामिल नहीं थी।
3: उधर धर्मेंद्र, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था फिडे के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इसके प्रमुख अकार्डी डोरकोविच को यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में शामिल कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने प्रतिबंध हटने तक अपना पद छोड़ दिया है।
4: और भारत की अंडर 20 फुटबॉल टीम 2027 में होने वाले एएफसी अंडर 20 एशिया कप फायर की तैयारियों के तहत 3 और 6 अगस्त को सिंगापुर के खिलाफ 2 अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी।
3: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और धर्मेंद्र को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल

की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार।

0: की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण

0: मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
2: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है।

0: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both Houses of Parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced